जैतो जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप संभारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को फल मो बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण तो चिट्टी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जाने ओ। श्री अस्पान कृपा तुमरी करो मैं न कहो सब तोहे बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाह गह की लाज अस गोबिंद दास तुहारो। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाह गह की लाज अस गोबिंद दास तुहारो। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकारो सत गुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां।

नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरियाए सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनु जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पे आ मेहरा मत होई।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आप जी नूं पता ही है कि अज 4 जून है, तीजा घल्लूघारा जून 1984, जो ये अज दे दिन 4 जून नूं भारतीय फौज अते खालसा फौज दा अकाल तख्त ते अमृतसर, जो अज दे दिन घमसान दा जंग चल रहा है, सो 4 जून नूं ये हमला भारतीय फौज ने श्री अकाल तख्त साहब जी नूं टैंकां ते तोपां दे नाल हमला किया। सो अज आओ उन्हां महान शहीदां नूं याद करदे हां। अज दे इह सारा हफ्ता तीजा घल्लूघारा जून 84 दे समूह शहीदां नूं याद दे विच है। आओ उन्हां शहीदां नूं याद करदिआं होइआं अज दे दीवान जून 84 दे शहीदां नूं समर्पित हन। आओ हुण भाई साहब जी, भाई जरनैल सिंह जी गुरु की बाणी दा कीर्तन सरवण कराउणगे, अते भाई जसवीर सिंह जी साबका रागी हजूरी दरबार साहब दे जो इत्थे आए हुए हन, उन्हां पासों वी कीर्तन सरवण करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु सत्संग जी और कीर्तन के समय की समाप्ति हुई। चल रही गुरु इतिहास की जड़ी वार विचार सत्कार योग ज्ञानी दर्शन सिंह जी होरों पासों आप जी सरवण करो जी। हो भुला बख्श दुनिया जी। वाहेगुरु जी का खालसा।

प्रतख गुरु निस्तारे, पतित पावन भगत वत्सल करुणा निदान, गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोश विच सुबाए मान जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ सतगुरां दी बख्शी

समय की समाप्ति है जी। जितना समा हुक्म होया सी आप जी की सेवा विच कीर्तन द्वारा सेवा की है जी। कीर्तन करदियां दस रहे पासों अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने। सतगुरु अते साध संगत बख्शन योग है जी, ओ बख्श लेना। आओ अनंत साहिब जी का जाप श्रवण करिए जी।

सेवा सिमरन अमृत वेला बख्शिश करना काम क्रोध लोभ अहंकार निंदिया चुगली ईरखा द्वैत बचाउणा चढ़दी कला करनी कड़ा प्रसाद दी देख सच के हाजिर है आप जी देख नू भोग लाओ सीत प्रसाद।

0: दर्शन परसे गुरु कह जन्म मरण दुख जाय।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वैसे पतुख सामंदी मोरे अरसाहु कुरसाहु चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह।

अकाल मूर्त जूनी सैप हंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नाल सलोकी महले पहले के लिखी टुंडिया सराज की तुनी सलोक महला पहला।

वत्सल करुणा निदान कोट ब्रह्मंडा दे मालक गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सत्य पातशाह जी दी पावन पवित्र निगी अगोश विच सबाईमान जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश सदका वडभागी गुरसिख संगत अमृत वेले तो गुरु दरबार अंदर सज रहे सुंदर दीवाना विच पहुंच के सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन दीदारे अमृतमई बाणी श्री आसा जी की वार होर शब्दां दा रस भिन्ना शब्द कीर्तन सरवण करके मिले हुए मोलक मनुखा जन्म दे सवासां घड़ियां समें नूं सफल बना रहे सतगुरु गरीब निवाज जो पामन लड़ीवार कथा उपदेश बख्शिश करदे आ रहे जून 1984 दा जो 1 जून तो 7 जून तक समय दे हुक्मरान ने जालम हकूमत ने सिख कौम नूं हकां दा हक देन दी बजाए अपनी सारी ताकत वरत के जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब लंगर हाल सारे थावां ते अटैक कीता है तीजा वड्डा घल्लू घारा वरताया है वो दिन चल रहे ने गुरु प्यारी साध संगत जी महान मरजीवड़िया उन्हां शहीदां ने कौम नूं पिठ नहीं दिखाई प्रैक्टिकल लीडर जड़े सन वो विक गए सन बेईमान हो गए सन संत अखवाउण वाले जेड़े सन वो झूठे पै गए सन जिन्हां कहा सी असी संत नहीं पुछिया सी सवाल पत्रकारां ने तुसी संत हो महापुरश कहिंदे नहीं कहिंदे लोग तुहानूं संत कहिंदे ने अगों महापुरशां जवाब दिता कहन लगे फिर ये सवाल लोकां दा लोकां नूं जाके पुछो इन्नी निम्रता सी

गड़दंग ना गड़दंग बा गड़दंग बा जचा गड़दंग ना गड़दंग बा गड़दंग बा जचा गड़दंग ना गड़दंग